tri, sana tripulari taru. Vedita sakala san san. Kaushik suno vanda ehe baal. Kutila kala vasa nija kula ghal. Tuma hata kahu jo chaha ubara. Kahita taap bal rosho hamara. Sura samara karani karahi. Kahina janava hi aap. Nityaman rana payani. Kayan karahi pralaap. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभा हु न कुल ही प्रसंसी काल हु डर ही न रन रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डराई सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के कुकरे पटल परसु